0: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
5: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
6: Leica Gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada bahar.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

कोई मने सुत होवे मन बुद्ध मने सगल पवन की शुद्ध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पथ स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म सेती।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते वहां।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिब तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहंड जाई।

जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

हरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूं मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस

पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए, तू देखे जहां पलक के हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके, हो तेरा र

0: पचासी झटका तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Gold, traffic and travel.
3: Good morning, Cameron McCarver here. Now, roads-wise, not looking too bad at all so far this Wednesday morning. The A113 Chigwell Road at South Woodford just got that still closed there due to the emergency water main repairs between the Charlie Brown's roundabout and Maybank Road. Public transport-wise, few things going on. Elizabeth Line still got severe delays on the Elizabeth Line between London Paddington and Heathrow Terminal 5. That's problems with the signals. Great Western Railway, we've got cancellations between London Paddington and Reading, and then Heathrow Express delays up to 10 minutes and some cancellations between Paddington and Heathrow Airport itself. That's your traffic and travel so far.
1: Yeah. Like a gold.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. One performer.
2: Countless personalities. A
4: whole universe of entertainment.
2: Sunil Grover, live UK tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
7: Jaam chalne lage.
6: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
8: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
10: Dad!
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen gaano ki yaadon mein ek khoobsurat musical कल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
7: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
6: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
12: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
13: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स your travel mantra.
14: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02038390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
1: लाइक अ गोल। लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे।
15: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ये है Leica Gold.
1: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है. बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके. जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट. एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम. टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
7: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
4: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avarapan 2.
3: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं। तो फिर
4: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.

0: जायका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com Start

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Start

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th of September एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स,
3: थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
6: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
5: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
7: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
8: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing: pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem, real ingredients, not chemicals.
7: So where do we find something like that now?
8: Right here in London. Baidyanath Sidhayu hair oil, shampoo and toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
11: बीकानेर वाला परंपरा भी,
12: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA, कॉल 07555-50-6015।
13: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: 0730-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
4: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
5: परंपरा भी
6: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
7: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
8: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
9: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इज लाइक अ गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती
3: अ स्टोरी ऑफ लव रिडेम्पशन एंड सेकंड चांसेस रिटर्न्स टू द बिग स्क्रीन
2: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा
3: इमरान हाशमी इज बैक इन द मच अवेटेड सीक्वल अवारापन 2
2: इस बार या तो ये अवारापन खत्म होगा या मैं
4: तो फिर
3: Witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.

0: जाना के हाँ हाँ हा, और सुनो हाँ एक एक परी थी।
1: क्या?
0: एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका।
1: क्या?
0: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेट्स बताने से पहले बताऊं अब आपको बात. कभी कभी जब दिल बहुत क्या कहते दुखी होता है, माइंड बहुत अपसेट होता है ना, तो फिर मैं दुर्वासा बन जाता हूं. अब आप नहीं समझेंगे दुर्वासा क्या होता है. अरे जो श्राप देता है. आज मैंने अपनी गूगल कौन आप सोचेंगे, अरे वो वाली हमारी जो पड़ोसन है ना खुश, मैंने उसको श्राप दे दिया, जा तुझे एलिजाबेथ लाइन से ट्रेवल करना पड़े. और वो मुंह बना के बोली, मैं तो बहुत दुखी होकर आई हूँ, आज मुझे एयरपोर्ट किसी को छोड़ने जाना था, बहुत परेशान हुई. मैंने कहा जान करके मेरे दिल को राहत मिली. मेरा भाइयों आधा रास्ता कार से ट्रेवल करने के बाद मैं ये स्टेशन पहुँच कर गाड़ी को कहीं पार्क करके और फिर मैं इस एलिजाबेथ लाइन से सफ़र करता हूँ. और वो सफ़र जो वो अंग्रेजी वाला सफ़र होता है. इतनी बढ़िया लाइन और इतनी बुरी सर्विस, बस क्या कहें साहब. अभी जब भी कोई मुझे परेशान करेगा याद रखना यही शराब दूंगा कि तुम्हें एलिजाबेथ लाइन से ट्रेवल करना पड़े. खैर साहब छोड़िए, क्या रखा है सच्ची बातों में. आगे बैठ बढ़ाएंगे और पाउंड का रेट बताएंगे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आज भाई भारतीय रुपयों में कितने पैसे दिए जा रहे हैं. वही कल वाले, फॉर वन पाउंड यू कैन गेट 128.45 रुपीज, 128.45 रुपए. यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई मोबाइल ऐप. तो साहब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आजमाइए और अपनों को पैसे भिजवाइए.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold.
1: ये है लाइका गोल्ड और मैं हूँ रवि शर्मा और कार्यक्रम का नाम है मनोरंजन. और कहते हैं कि रोज कहते हैं पैसे भिजवाइए. भाई किस लिए पैसे भिजवाएं, क्यों बहनों की राखियां नहीं पहुंची अभी तक आपके पास? अरे दान दक्षिणा पहुंचाओ उनको. नहीं नहीं नहीं मेरा अरे भाई नहीं, मेरा कोई कमीशन बीच में शामिल नहीं है, लेकिन बहनों को तो देती है ना राखी पर, तो सर इसलिए भिजवाइए. वैसे भाई दीवी अगर आप बहन ही हैं तो आपने राखियां पोस्ट कर दिया नहीं. भाई अगर नज़दीक है तो भाई ज़रूर बांधने जाइएगा, अच्छा लगेगा उनको कि उनके घर पर जाकर उनकी कहीं भी जहां वो उस वक्त उपलब्ध हो तो राखी बांधिएगा उनकी कलाई पर. वरना भाई जल्दी पोस्ट कर दीजिएगा क्योंकि यूके में रक्षाबंधन का त्यौहार 27 तारीख को है, जबकि भारत में 28 को भी मना रहे हैं लोग, लेकिन 27th तक आपकी राखियाँ पहुंच जानी चाहिए भाइयों के पास.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
3: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
4: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
3: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
5: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
6: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
5: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
7: Soulful melodies, timeless poetry, the greatest guzzles that touch your heart. Leica Radio Guzzles launches soon.
8: Om Mangal Buddh Veer Shukr Shani Itwar. 7 dinon mein hansna chahiye kam se kam 700 baar.
9: हाँ भाई, हंसना तो चाहिए। अगर कोई हंसाने वाला मिले, कोई अपनी चटपटी बातों में फंसाने वाला मिले, हंसना चाहिए। कोई भाई हमदर्द हो, कोई साथी हो, कोई जोकर हो, कोई नौकर हो, रवि शर्मा जैसा। मुझे बचपन से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी उपयोगी वस्तु हूँ, आई टेल यू। टीचर ने मुझे क्लास में मॉनिटर बना रखा था, और मॉनिटर इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, वो तो मैं था ही भाई, बचपन से इंटेलिजेंट रहा हूँ मैं, लेकिन साहब मुझे मॉनिटर इसलिए बनाया गया कि मैडम हमारी घर के सारे काम मुझसे करवाती थी। खैर साहब, वो तो पढ़ाती थी, चलो उनका मैं माइंड नहीं करता। हमारी पड़ोसन जब भी ऐसे कड़कती धूप में दोपहरी में कुछ पैसे दे के कहती, जा मेरे लिए ये लेके आ। और एक दिन तो साहब कमाल कर दिया, कहते रवि, मैंने कहा बोलो मैडम, जापान लेके आ। मैंने कहा जापान लेके आओ, मेरे बाप की जायदाद है क्या, जापान लेके आओ। कहती है नालायक, जा और मन्नू परवाड़ी से पान लेके आ।
10: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
9: Ja, paan leke aa.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहनों भाइयों, गीत संगीत के साथ सफर तय करते हुए हम आ गए इस मोड़ पर जहां अब खबरों का वक्त हो गया है, तो समाचार सुनवाते हैं आपको। लेकिन पहले तो यह खबर साझा करें आपके साथ कि भाई प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस समय वो अपनी वो क्या होती कोबरा जो मीटिंग होती है ना भाई, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। किस बात पर? ये जो क्रिमिनल्स को जल्दी रिहा करने की बात यहाँ चली थी कि भाई जेलों में जगह नहीं है, तो उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर गंभीर अपराधियों को रेप जैसे और मर्डर जैसे जो अपराधी हैं सजा काट रहे हैं, जेलों में जगह बनाने के लिए उनको अगर जल्दी रिहा किया गया तो समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा और लोग क्या सोचेंगे, ये भी बात है, सोचना ज़रूरी है। और भाइयों ये भी बता दें, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई जेलों में तो जगह नहीं है लेकिन माइग्रेंट्स को होटल्स में ठहराने के लिए आप जगह क्रिएट कर लेते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। 46 होटल इस साल जो है वो ऐसे होटल जिनमें जो माइग्रेंट्स के लिए ठिकाना बनाए गए थे, उन्हें वो ठिकाना बंद किया जा रहा है माइग्रेंट्स के लिए। तो सरकार काफ़ी कदम उठा रही है लेकिन उसके बाद भी भाई समस्याएँ तो सामने हैं, ठीक है। और एक समस्या नहीं, मेरे लिए तो कोई खास नहीं है भाई, इसमें मुझे क्या समस्या हो सकती है। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर मॉडल इन्फ्लुएंसर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ शादी कर ली है, तो आपको क्या तकलीफ है शर्मा जी? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, तकलीफ कुछ नहीं है। मैंने तो पहले कह दिया था कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी शादी का ऐलान भाई बताना तो चाहिए था। अब रोनाल्डो कह रहे हैं पिछले 10 साल से मेरे साथ घूम रही है। अरे भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए शर्मा जी। तो भाई खबरें शुरू करने से पहले हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फुटबॉलर हैं दुनिया के जाने माने, इन पर चिंतन भी हमने किया था। और भाई उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज को शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अब खोलते हैं खबरों का खुलासा, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द न्यूज़ टुडे। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का दावा है कि नोवोरोसिस्क में रूसी नेवी के अड्डे पर उन्होंने बड़ा अटैक किया है, मतलब उनकी फौज ने। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की का यह दावा है कि यूक्रेन की फौज ने कल रात नोवोरोसिस्क में रूसी नौसैनिक अड्डे को निशाना बना करके एक बड़ा कैंपेन चलाया है। उन्होंने लिखा है कि नोवोरोसिस्क काला सागर में रूसी नेवी का आखिरी बड़ा मजबूत ठिकाना है और ये अग्रिम मोर्चे से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पल्यानी सित्या जेट ड्रोन नेपच्यून और मिसाइल्स और मानव रहित, यानी जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ह्यूमनलेस नौसैनिक प्रणालियों ने तय ठिकानों पर कामयाबी पूर्वक अटैक किया है। भारत से आने वाली खबरों में अमित शाह के सदन में चर्चा के लिए तैयार वाले बयान पर राहुल गांधी का बयान आया है। कई दिनों से राहुल भाई ये मांग कर रहे थे कि होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आकर के बयान देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपोजिशन की दूसरी पार्टियों ने भी साफ कर दिया है कि हमें अमित शाह की कल्पनाएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम सिर्फ सीधी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है। दिल्ली में उन स्टूडेंट्स पर गोली किसने चलाई, किसने एक स्टूडेंट की आंखों की रोशनी छीन ली, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, ये आदेश ये हुक्म गृह मंत्रालय ने लागू करवाया। अब भाई बात यह है, वैसे तो खैर पॉलिटिक्स से आप परिचित हैं लेकिन कल से हम सुन रहे हैं कि अमित शाह बयान देना चाहते हैं, पर उस वक्त वो चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर और दूसरे जो अपोजिशन के नेता हैं वो सदन में मौजूद रहें। एक खबर पाकिस्तान के बारे में, लाल सागर में जहाज पर हुए हुती अटैक में 3 पाकिस्तानी सिटीजन्स की मौत हो गई है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कमर्शियल जहाज पर अटैक किया और इस हमले में 3 पाकिस्तानी सिटीजन्स मारे गए। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने आज एक्स पर पोस्ट करके इस हमले की निंदा की है। उन्होंने बताया कि हमले में 3 पाकिस्तानी नागरिक जो है उनकी मौत हुई है, जबकि एक जख्मी भी हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान घटना की पूरी जानकारी और उसके हालात का पता लगाने के लिए सऊदी अधिकारियों और यमन की इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के संपर्क में है। अमित शाह का भी बयान आया भाई। अमित शाह भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आज मैं संसद पहुंच रहा हूं और वहां रहूंगा 3 बजे तक। विपक्ष को जो पूछना है पूछें, जो सवाल करने हैं करें। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज बताया कि लापता और भाग गई जैसे शब्दों का इस्तेमाल आजकल भारत की पब्लिक और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूं सदन में, पूछिए क्या पूछना है। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल के बाद दोबारा पद पर बने रहने से इनकार किया है। टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखर ने आज अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 2027 को अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा चेयरमैन पद के लिए वो अपना नाम पेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप में अपने पेशेवर करियर के 40 साल उन्होंने पूरे किए हैं, अब वो चाहते हैं कि कोई ये नेत्र संभाले। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और इसमें केंद्र सरकार से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की तादाद को परमानेंटली तय करने की मांग की गई है। विधानसभा ने उनके इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। भारत पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ की आशंका के मद्देनजर पीटर नवारो का एक बयान आया है। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अच्छे रिश्ते हैं, टैरिफ पर दोनों खुद बात करेंगे, उन्होंने कहा। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के काउंसलर हैं पीटर नवारो, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच रिश्ते अच्छे हैं और दोनों नेता टैरिफ समेत अन्य मुद्दों को आपस में सुलझा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टीएमसी सांसद, ये भाई तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की अपोजिशन पार्टी है ममता बनर्जी वाली, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर नूडल्स की तरह कानून बनाने का इल्जाम लगाया है। नूडल्स की तरह जल्दबाजी में, नूडल्स की तरह कानून बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी ने 17 दिनों में 10 विधेयक पास कर दिए, यानी हर बिल को औसतन 4 मिनट मिले। संसद को एक गहरे अंधेरे कमरे में बदला जा रहा है उनके अनुसार। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को हिरासत में लिए जाने की अफवाहों के बीच रांची के एसपी पारस राणा ने आज सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोटेस्टर को, प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने के लिए वो प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचे थे। झारखंड के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी आज सुबह से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने वहां पहुंचे हुए हैं रांची में। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी व्यक्ति, आई एम द लास्ट वन टू ट्रस्ट ईरान। उन्होंने कहते हैं कि लगातार मुझसे झूठ बोला है। ट्रंप ने दावा किया कि इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है और ईरान का वहां कोई नियंत्रण नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बंदरगाह पर उधर जा रहे एक जहाज को रोककर उसके स्टीयरिंग सिस्टम को नाकाम कर दिया है। बताना चाहते हैं कि भाई अमेरिका का कंट्रोल है हॉर्मुज स्ट्रेट पर। और कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 180 हो गई है। बचाव कार्य वहां अब भी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान केली और पेरेरा शहरों में हुआ है। 7.4 तीव्रता का भूकंप यानी जलजला सोमवार की सुबह 7:34 पर आया था। इसके झटके पश्चिमी कोलंबिया के सैकड़ों मील दूर तक महसूस किए गए थे। और भाई आज सूर्य ग्रहण के लिए तैयार रहे, शाम को है, और उस बारे में और कुछ खबरें आगे चल करके कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल समाचार समाप्त होते हैं।
4: ये है
2: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: 1984 की फिल्म तोहफा का गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और बप्पी लहरी का स्वर भी शामिल था इसमें। भाई ये गीत आपने सुना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है Like a Gold Holiday Breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और साउथ होल ट्रेवल का संदेश फिर याद दिला दें आपको कि साउथ होल ट्रेवल बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ ये घोषणा करते हैं कि FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai,
4: London. Jay's Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow me. Today, 3rd October, 7 p.m. Harrow Art Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Art Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
6: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
12: T's and C's apply.
0: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
13: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद
14: भी। बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
15: बी पार्ट ऑफ ए हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग।
16: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस। अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी।
15: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर, सेन River cruise

0: the Paris City Tour.
1: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
0: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
5: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
6: Currency rates बता दो भाई, LemFi की ओर से एक पाउंड के बदले इस समय भारतीय मुद्रा में 128.84 रुपीस दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपए 375.17, श्रीलंकन 451.76 और बांग्लादेशी टके 166.88.
4: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
7: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
6: Gold Rate, note कीजिए, आज इस समय the gold is sold at the rate of 105 pounds for 1 gram gold. Expensive.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
8: Like a God.
9: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
10: I hope Major Nena hum log waqt par pahunche.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410, साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel Couture.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271193।
3: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
4: तमे बता पुरुष हो तो लगने कुवारा हो छो।
5: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगवानो बंद करो।
3: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली पोटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। एट दिस मोमेंट इन द ब्रिटिश क्लॉक्स द टाइम इज 4 minutes past 11 एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई ब्रिंग यू थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के विचार के लिए हमें आलेख भिजवाया है साउथ हॉल से विपुल भाई ने, विपुल सिदानी, क्वालिटी वाले। और भाई विपुल भाई का धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम में हम किसी को स्वागतम भी कहना चाहते हैं और किसको कहना चाहते हैं जो भारत से आए हैं और भाई यहाँ मेहमान हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ डॉक्टर अलका के ही मेहमान नहीं हैं, आप लाइका रेडियो परिवार के भी गेस्ट हैं। आप हमें सुन रहे हैं, आपको बता दूं कि आप हमें भारत में भी सुन सकते हैं। बिजनौर से आए हैं आप, और भाई बिजनौर वालों को, वैसे बिजनौर वालों का कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी क्लोजली रिलेशन है, तो काफ़ी लोग वहाँ से बिजनौर में हैं। नीतू चौधरी और विवेक चौधरी, वेलकम टू यूनाइटेड किंगडम एंड वेलकम टू लाइका रेडियो परिवार। आपके बेटे सात्विक चौधरी को भी हम स्वागत कहते हैं। सो प्लीज़ कीप अस लिसनिंग इन इंडिया एज वेल, इन बिजनौर एज वेल एंड वेयर एवर यू आर। हम 2400 घंटे सातों दिन वर्ल्ड वाइड सुने जाते हैं, तो आप भी हमारे परिवार में जुड़ जाइए, स्वागत है आपका। अब सुनिए आज का चिंतन, विवेक सिदानी का आलेख। वो याद दिला रहे हैं कि रवि जी आपको पता है आज का दिन किस बात के लिए जाना जाता है, भाई आप बताएंगे। आइए सुनते हैं आज का चिंतन, आज का विचार।
1: चिंतन चिंतन,
0: आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस। भाई हाथियों का भी दिन होता है, सबका होता है। मदर्स डे है, फादर्स डे है, विश्व हाथी दिवस है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है उस विषय, उस व्यक्ति, उस पशु या उस ऑब्जेक्ट के प्रति जागरूक बनाने का उद्देश्य सामने रख करके वो दिन तय किया जाता है। हाथियों के प्रति हम सेंसिटिव हों, जागरूक हों और जाने भाई उनकी समस्याएं क्या है। हाथियों की संख्या जब कम हो रही थी, पता चला भाई लोग हाथी दांत के लिए उनकी हत्याएं तक कर देते हैं। पर हाथी जो बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे शेर भी डरता है, वो शेर से नहीं डरता। ऐसे हाथी को पालतू कैसे बना लेते हैं लोग, या कैसे घेर कर उसकी हत्या कर देते हैं, कैसे वो इतना कमजोर हो जाता है। तो आज का चिंतन ये बताता है कि हाथी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी जिस चीज से डरता है ना, वो डर एक सोच होती है और वो सोच कमजोर बनाती है। आज के दिन का चिंतन नोट कीजिए, जीवन की सबसे बड़ी कैद अक्सर हमारे मन के भीतर होती है। इस संदर्भ में विपुल भाई ने जो प्रसंग भेजा है वो सुनिए। एक यात्री, एक मुसाफिर एक गांव से गुजर रहा था और उसने देखा कि कई बड़े बड़े हाथी, विशाल काय हाथी, एक मामूली सी पतली रस्सी से बंधे खड़े हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई, एक रस्सा इतने बड़े हाथी को बांध के कैसे रख सकता है। उसने महावत से पूछा, भाई ये हाथी भागते नहीं, ये तो एक झटके से इस रस्से को तोड़ सकते हैं। महावत मुस्कुराया और बोला, ये इस रस्से से नहीं बंधे हैं, ये अपने मन के उस विचार से, उस धारणा से बंधे हुए हैं जो इनकी बन चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, ये मान चुके हैं। मुसाफिर ने पूछा, क्या मान चुके हैं? उसने कहा, जब ये बहुत छोटे थे ना, समझो पैदा हुए थे, तो उन्हें इसी रस्सी से बांधा जाता था, तब ये बहुत कोशिश करते तो भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत छोटे थे ये और ये रस्सी इनके लिए मजबूत थी। ये नहीं कर पाए, कई बार इन्होंने ट्राई की बचपन में, तो धीरे धीरे उनको ये विश्वास हो गया कि ये रस्सी नहीं टूट सकती, ये कभी नहीं टूट सकती। पर आज जबकि इनमें अपार ताकत है, विशालकाय शरीर, इतने मोटे मोटे पांव इनके भाई, किसी पर रख दे तो चकनाचूर हो जाए, और एक झटका मारे उस पांव से उस भाई ताकतवर लेग से तो रस्सी क्या लोहे की बेल भी तोड़ सकते हैं। पर ये कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो बचपन का जो इनका अनुभव है वो इनके दिमाग पर दिल पर लिखा गया है। ये मान चुके हैं कि ये बंधन वो कभी नहीं तोड़ सकते। असल में कई बार हमारी कैद बाहर नहीं होती बहनों भाइयों, भीतर होती है। सिर्फ एक पुरानी नाकामी, बस एक डर, एक सोच हमें रोक लेती है और हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कैद अक्सर हमारे मन के भीतर होती है। जिस दिन मन की ये रस्सी टूटेगी ना, उसी दिन आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। तो आइए अपने डर की रस्सी को पहचाने, उसे तोड़ने का साहस करें। पुरानी रूढ़ियाँ, पुरानी परंपराएं, कुछ ऐसी बातें जो आज लागू नहीं होती हैं, जो समाज में, जो तरक्की में, प्रगति में, डेवलपमेंट में रुकावट बनती हैं, हम उन्हें तोड़ने का साहस नहीं करते। खैर भाई, आज विश्व हाथी दिवस पर हम हाथियों की दोस्ती को ये गीत समर्पित करते हैं। कहते हैं कि जब हाथी ये मान लेता है कि मुझे यहीं रहना है, इनके साथ रहना है, फिर वो विशाल का यानी बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा होकर भी आदमी का एक वफादार दोस्त बन जाता है, साथी। अब हाथी को साथी के रूप में गीतों में जगह मिली है, तो भाई मुझे ये गीत मिला है। हाथी के भी नाम और मनुष्यों के साथ उसकी दोस्ती के भी नाम। आज का चिंतन, आज का विचार, विश्व हाथी दिवस है, उसे संरक्षण चाहिए, वो एक अच्छा दोस्त हो सकता है।

0: आज का चिंतन, आज का विचार। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर विपुल भाई सीडानी ने क्वालिटी फूड से भाई आज का ये आलेख भेजा। धन्यवाद विपुल भाई, आप खुद भी जो है एनिमल संरक्षण के लिए बहुत काम करते हैं। पशु पक्षियों के प्रति हमें अपना प्रेम प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। और हाथी एक बार बड़ी तेजी से इनकी संख्या कम होने लगी, फिर ये विश्व हाथी दिवस जो है इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित किया गया। और भाई आज उनके प्रति जागरूक बनाकर, अवेकनिंग फैलाकर उनकी इस नस्ल को बचाने के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। आज के दिन के साथ और भी कुछ बातें जुड़ी हैं। एक भाई मैं देख रहा था कि आज किस किस का जन्मदिन है। आज 12 अगस्त को डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती हम मनाते हैं। उनके विषय में भी मैंने चिंतन किया। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के, स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, उन्हें हम बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर, उनकी भी जयंती आज है। वो भी आज ही के दिन पैदा हुए थे। और भाई आज जन्मदिन मनाने वालों में सारा अली खान 1995 में जन्मी थी, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी। तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की पूजनीय माता श्री 1914 में आज ही के दिन जन्मी थी। डॉक्टर नरेश त्रेहन, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं भाई भारत के। भाई कितने लोगों का उन्होंने इलाज किया, बड़ी बड़ी हस्तियों का, तो हम अखबारों में इनका नाम पढ़ते रहे हैं। उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। सीधारमैया 1948 में जन्मे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के। और सीताराम येचुरी, ये भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हैं, 1962 में चेन्नई में जन्मे थे। और आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज के दिन एक और पाकिस्तानी डिक्टेटर का जन्म हुआ था, भारत में हुआ था। कल अगर परवेज मुशर्रफ का जन्मदिन था तो आज जियाउल हक का जन्मदिन है। भाई दुनिया में होते तो आज वो अपना जन्मदिन मना रहे होते। जियाउल हक साहब, पाकिस्तानी डिक्टेटर, प्रेसिडेंट, या अब जो भी उन्हें नाम दें भाई। अब हम पूछ रहे जी, वो तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, आप उनके जन्मदिन का जिक्र कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान के डिक्टेटर पाकिस्तान बाद में बना, तो वो फिर डिक्टेटर वहां के बने। अब वो खाली पैदा होने के लिए तो हिंदुस्तान नहीं आए थे, जालंधर में उनका जन्म हुआ था। ऐसे कई भारतीय राजनीतिज्ञ भी पाकिस्तान में जन्मे थे, याद करते हुए। आज एक और वही संगीत के धुरंधर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1997 में गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक भाई, उनकी हत्या हो गई थी एक मंदिर के बाहर। गुलशन कुमार टी सीरीज वाले अच्छे मित्रों में से थे। जब कभी मैं अपनी एल्बम के पन्ने उलटता हूँ तो भाई उनकी तस्वीरें, अनुराधा पोडवाल, गुलशन कुमार और हमारे एक और मित्र विक्रम टा स्टूडियो में बैठे मेरे साथ नजर आते हैं। गुलशन कुमार को मैंने एक से ज़्यादा बार इंटरव्यू किया था, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत मीठा बोलते थे, बड़े सहज व्यक्ति थे। संगीत को और धार्मिक संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया था उन्होंने। आज का चिंतन समेटते हैं और याद दिलाते हैं कि भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And let me tell you, SBI UK, yani State Bank of India UK, for £1 they are giving today maximum 128.45 rupees. 128.45 adhiktam. Agar aap bhijwana chahe to you can go to any of their branch or you can do it online or by sending by using the Yono SBI UK mobile app. You can also send money to your friends, relatives. Rakhi ke tyohar par behno ko paise bhijwane ke liye ye rasta aap apna sakte hain. Yaad rahe, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: से।
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो।
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, auto protected.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3344 line.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Live.

बुधवार के दिन बड़ी उठपटांग विचार आती है भाई, सोचता हूँ कार्यक्रम में उन्हें साझा करूँ कि ना करूँ। अगर आप गाड़ी चलाते हुए ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भाई अपने स्टीयरिंग पर पूरा कंट्रोल रखिएगा। ये कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं भाई, हंसने हंसाने के एक प्रोग्राम में ये शर्त रखी गई कि भाई चांद पर गाने सुनाइए, लेकिन शर्त यह है कि चांद की जगह आपने जो शब्द इस्तेमाल करना है वो चांद नहीं होगा, वो शब्द होगा सांड। अब सोचिए जरा, गाना गाएं ये तो कह रहे चांद मेरा दिल, दिल सांड मेरा दिल।

0: नहीं सांड मेरा दिल। अब सोचिए जरा भाई, किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी की प्रशंसा में गाना गाना हो और वो गायक सांड देखा याद आई सूरत तेरी, या फिर वो गाना सांड सी महबूबा हो मेरी कब, या फिर तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज सांड निकला। पत्नी को देख के कहेंगे सांड सी महबूबा हो तुम।
1: मैंने चांद देखा है,
0: चांद ही बोलना चांद आप, लेकिन सोचना जरूर उसके बारे में। जब भी चांद का जिक्र आए किसी गीत में, जरा सोचना उसको सांड से बदल के।

चांद शब्द को सांड शब्द से बदल के फिर गाइए, फिर हंसिए, मन मन में गाइए, बोल के नहीं, पत्नी सुन लेगी, आगे आप समझदार हैं।

0: है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: दस्तक होती है
3: जरा सी आहट,
2: कौन हो सकता है?
3: होती है,
2: दिल कहता है कहीं वो तो नहीं।

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Extra podcast update.
4: और लेट मी टेल यू भाई, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का नंबर 28 इज लोडेड, आप देखना ना भूलें। होस्टेड बाय खुश, बहुत गंभीर विषय टच किया है खुश ने इस बार। और भाई टॉपिक है, इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप? बहुत सारे लोग भाई इसमें दिलचस्पी लेते हैं, जो मानते हैं वो लेते हैं, जो नहीं मानते वो भी जानना चाहते हैं, दिलचस्पी लेते हैं इसमें। और आप अगर जानना चाहें तो भाई ज़रूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com
4: कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
7: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
12: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर हॉलीडे, कम टू अम्बाला and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
13: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 0203773633। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
4: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
5: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
4: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
5: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
4: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
5: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. ग्रीन्स बाय डैनियो, प्राइम लोकेशन,
4: हाई अप्रिसिएशन
5: इन दुबई।
6: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्ट अप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति ना सुर, गरबा नी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
11: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avarapan 2.
10: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं।
11: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Tasty swag and sweet jam. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
16: Leica Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
18: आर्टिस्ट ऑफ द वीक को लेकर के भाई, वैसे तो हम लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते, लेकिन झगड़े तक बात पहुंच गई। अब वो पाजी कहने रे, लता जी तो पंजाबन है ये। मैंने कहा नहीं जी, लता जी महाराष्ट्रियन है। कहते नहीं नहीं काका की गल पे करता, लता जी अपनी पंजाबन हैगी है। देखिए भाई, आर्टिस्ट ऑफ द वीक लता मंगेशकर है, ये सब ठीक आप जानते हैं इस सप्ताह, लेकिन वो पंजाबन है। कहता भाई वो ना ना ही पता लगता, ना लैके वेखो ना लता जी का ना की दसो, लता जी का ना। फिर जेडे गाने हैगे वह भी भाई रिदम सुन के वेखो पंजाबी हैगी है। जो ढोलक बजती है ना, है ना पंजाबी स्टाइल। और फिर उसका ना लता जी का ना पूरा ना लैके देखो मैं कि ये ना उन्होंने कहना उन्होंने ना है लता मंगेशकोर ये पंजाबन ना है कि नहीं। मैं क्या ठीक है भाजी तुम 100% सही मैं 100% रोंग।

0: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: लो जी, लता मंगेशकर ही पंजाबण नहीं है, आशा भोसले भी पंजाबण आ। सुन के वेख लो।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहनों भाइयों, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद दिला दें, एक सूचना आप तक पहुंचा दें कि कॉमेडियन सुनील गावस्कर का भी चर्चा हो रहा हो, वैभव सूर्यवंशी के बारे में बड़े प्रभावित हैं, लेकिन सुनील नाम के जितने भी लोग हैं ना, बड़े टैलेंटेड होते हैं, जैसे रवि नहीं क्या है भाई, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, आप ही लोग कहते हैं मैं ओके सुनील ग्रोवर के बारे में भी ये बताना चाहता हूँ। सुनील ग्रोवर भाई एक तो हरियाणा से हैं, बताना जरूरी है भाई, टैलेंटेड लोग वहीं से आते हैं। दूसरा ये है कि सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओबो अरीना वेम्बली थर्सडे 29 अक्टूबर को आ रहे हैं और छा रहे हैं। और भाई उसके अलावा लेस्टर में भी उनका कार्यक्रम है एट कहाँ, ये मेटोली अरीना ऑन सैटरडे 31 अक्टूबर वहाँ है। टिकट्स एट AXS एंड इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: लाइका गोल्ड।
4: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का ये संदेश भाई ध्यान से सुन लीजिए। हम फिर याद दिला रहे हैं आपको, दुबई जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, प्रोग्राम बना लीजिए। क्या है संदेश साउथहॉल ट्रेवल का कि वहाँ की सारी व्यवस्था हम कर सकते हैं भाई। वो जो FCDO का फरमान था वो तो उन्होंने, वो एडवाइस जो था, उनका मशवरा था, उन्होंने वापस ले लिया है अगेंस्ट, बट ऑल एसोसिएशन ट्रैवल टू दुबई ये था उनका कि भाई बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कॉल साउथहॉल ट्रैवल फॉर देयर मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price
1: at all protected.
2: Visit travelhubworld.com.
3: September mahina ma hasya no double dhamako fari aavi rahyo chhe.
4: Tame bata purush ho to lagne kuvara ho chho.
5: E tame stri omne ache ne purusho nam khota ogovano band karo.
3: Comedy king Nimesha ane queen of comedy Mallika Shah laine aavi rahya chhe. Super hit Gujarati natak Halo Patel bhai ni jaan ma. Have Ricely, Potter's Bar, Ilford, South London ane Luton ma. Tickets ane vadhu mahiti mate aaj j call karo Manju ne on 07931-534-270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
8: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
8: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
9: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
10: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
9: So where do we find something like that now?
10: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
11: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
12: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
13: Bikaner wala parampara bhi swad
14: bhi. Bikaner wala mein enjoy kijiye famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch. Aaj hi aaiye 101105 High Street, Honslow, TW3 1QT. Call kare 07487-687-885.
15: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
16: Cutthroat Ke Khiladi.
17: Deirdre, look,
16: It's the bottom lids this time, sliding across their car bonnet.
17: Leave them be, Philip. They just claim confident.
16: Claim confident?
17: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
16: Deirdre? Deirdre? Come back here.
18: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
19: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: और मेरा भाई ये टेस्टी ट्रैक सुनवाने से पहले याद दिला दें आपको, आज 12 अगस्त को दुनिया के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। कुछ इलाकों में ये टोटल भाई सूर्य ग्रहण होगा, जबकि कुछ जगहों पर ये आंशिक ग्रहण जो है दिखाई देगा, पार्शल जो है। तो आप इसे सीधे ना भी देखवाएं तब भी दुनिया भर से इसकी शानदार तस्वीरें देखने के लिए तैयार रहिएगा। वैसे सीधे तो देखना भी नहीं चाहिए। बता दें आपको कि ब्रिटेन और यूरोप के कुछ हिस्सों में लगभग 3 दशकों का सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य ग्रहण आज होने जा रहा है। ब्रिटेन के ज़्यादा हिस्सों में चांद सूर्य के 90% से ज़्यादा हिस्से को ढक लेगा, जबकि आइसलैंड और स्पेन के कुछ हिस्सों में दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।

मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। भाई ब्रिटेन में कुछ लोग जो है शाम 6 बजे यहाँ के समय के अनुसार से तुरंत इसके बाद सूर्य ग्रहण देख सकेंगे, जो लगभग 1 घंटे बाद अपने चरम पर पहुंचेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, रूस के साइबेरिया से इसकी शुरुआत होगी, दिखना शुरू होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद, सूर्य और धरती दोनों की सीध में, तीनों सीध में आ जाते हैं और चांद बीच में होता है। इससे आसमान में वैसा अंधेरा हो जाता है जैसे सुबह होने से पहले या शाम ढलते समय होता है। आज शाम को ये होने जा रहा है। अनूप जलोटा रहे हैं और गा रहे हैं, मुझे यकीन है इस गीत की फरमाइश जरूर की जाएगी उनको।

0: सूरज की गर्मी से जलते हुए। आज तो भाई सूरज शाम को थोड़ी देर के लिए अदृश्य होगा।
1: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के द्वारा स्पॉन्सर्ड भाई आज जो ये करेंसी रेट्स हैं इनमें बता दूं कि एक पाउंड के बदले कितने ऑफर कर रहे हैं वो। वेल फॉर वन पाउंड यू कैन गेट इंडियन करेंसी में 128.93 रुपीस, पाकिस्तानी 375.54, श्रीलंकन 451.9, बांग्लादेशी टके 166.51 और अफगान अफगानी 88.56।
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now.

0: This is Like a Gold. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
1: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.

0: दूसरों के घरों की छत पे ताक झांक करना शर्म नहीं आऊंगी।
1: सुनो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है।
0: नहीं रहना है? पर तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ।
1: हाँ, सपनों के राजकुमार। अब मैं जाग गई।

जैस्मिन, शुक्रिया गुरुदेव गांजा, विजय सटन वाले, नैना शाह, महेंद्र बरजारिया, फारूक मोहम्मद। आंटी जी तुसी ठीक कहते हो, जरा कुछ तुसी लिखा है, हालांकि नहीं नहीं सच लिखा, तुसी हमेशा सही लिखते हो। कहते यू आर टू मच रवि शर्मा, यू आर टू मच, आई एम नॉट ओनली टू मच, आई एम थ्री मच, आई एम फोर मच, बिलीव मी। निर्मला जी, देशराज बैसन साहब, सो

आज मनोहर महाजन जी का जन्मदिन है, याद करते हैं हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक। दुनिया में नहीं है होते तो कहते आज अपना जन्मदिन मना रहे होते। अर्जुन जी, प्रकाश सुथर, भरत गंगाराम, पमी सिंह, जगदीश वत्सला, हरविंदर, राजीव पटेल, अरुणा, नीला चौधरी, प्रदीप सोलंकी, राजीव मिल्टन किंग्स वाले, मिलन हेना, कपिल वाटफोर्ड वाले भाई, विजय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नीलम कैसे भूल सकते हैं आपको, अनिल सोनी खान साहब, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर खान, हंसा वोरा जी, लो भाई आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया है, तो अब जाना होगा। अगली मुलाकात तक के लिए श्रीमती अनुमति दीजिए।

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All मैमस्टर products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.
6: Soulful melodies, timeless poetry, the greatest guzzles that touch your heart. Leica Radio Guzzles launches soon. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स पत्थर के सनम। इसके अंदर मैंने सोचा कि चांद और सूरज वाली मामला है, तो मैंने ये गाना सोलर इक्लिप्स वाले गानों में शामिल कर दिया। एक गाना है फिल्म सूरज और चंदा का, तो उसमें एक्चुअली बिगिनिंग में तो नहीं आता है, लेकिन इधर सूरज
1: जेमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद
2: बाली भ्रंबर
1: जेमिन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
0: हाँ जी, जैसे मैं कह रहा था, थे एक गाना है तेरे नाम का दीवाना, रफ़ी साहब ने जो गाया है, सूरज और चंदा फिल्म का टाइटल है, लेकिन उसके अंदर सूरज और चंदा में यू कैन इमेजिन, कैसे कहूँ मैं, उसके अंदर जो लिरिक्स के अंदर बीच में गाने के वो टाइटल में आता है, कौन सा गाना था, महबूब की मेहंदी, यस यस यस, वो गाना है ना, ये जो चिलमन है, उसमें चांद और सूरज कहाँ आता है, आता है इधर सूरज है उधर चांद है, वो सुनते रहना, मजा आ जाएगा।
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV. I hope mission hai na hum log

जगत में अंधेरा होने वाला है, दैट बी एट 7:13 PM इन लंदन। सो उसके बाद हम सूरज जी को कहेंगे, सूरज रे

0: क्या गाने क्या गाने. लेकिन वी यूजुअली रिमेम्बर द सिंगर. यहाँ पे भूपेंद्र सिंह जी को हमने याद किया फिल्म आहिस्ता आहिस्ता. एंड व्हाट वंडरफुल लिरिक्स. और दूसरा गाना हजार राहें मुड़के, लता मंगेशकर और किशोर कुमार, थोड़ी सी बेवफाई. वो भी गाने हम खयाम साहब का कंपोजिशन और गुलजार साहब की लिरिक्स. बट वी हैव टू गिव ट्रिब्यूट टू द मैन हु रोट स्टोरीज ऑफ दीज फिल्म्स एंड ऑल्सो डायरेक्टेड द फिल्म्स. अब देर इज सो मच कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट इस्माइल श्रॉफ्स डेट ऑफ बर्थ. कभी कभी डेट ऑफ बर्थ दिखाई जाती है 1957 की फरवरी, एंड एट अदर टाइम्स दे से 12th ऑफ ऑगस्ट 1950. आई हैव डन ट्रिब्यूट्स ऑफ हिज ऑन 12th ऑफ ऑगस्ट 1950 रेगुलरली, सो आई एम गोना स्टिक टू दैट. He passed away on 26th of October 2022 and he was born on 12th August 1950. His 76th birth anniversary, and he passed away at the age of 72 in Mumbai. He was born in Andhra Pradesh, that is Kumul. Unhone ye film jo Thodi Si Bewafai itni super duper hit hui. And he was well known for that particular film. And it was written by his brother, Moinuddin. What a beautiful story he wrote. And Ismail Bhai ne ye direct ki. Inki life ke baare mein agar hum dekha jaye, to a director and a writer. And jitni bhi hit filmein unhone ki, आई थिंक तकरीबन 18 फिल्में होंगी जिसमें से 12 तो डेफिनेटली हिट्स थी. एंड ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1975 टिल 2022. 47 ईयर्स आउट ऑफ हिज 72 ईयर्स ऑफ लाइफ. ही वॉज बॉर्न एज एस वी इस्माइल, ASMAIL इस्माइल. बट इन्होंने क्या किया था, उनका नाम ESMAYEEL इस्माइल श्रॉफ इन्होंने रखा था. अच्छा, इफ गॉड एंड सन आहिस्ता आहिस्ता फिल्म थी, अगर वहां से शुरुआत हुई थी उनकी, इन्होंने एक साउंड इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन तिरुचिरापल्ली. या आई गॉट इट राइट, तिरुचिरापल्ली. एंड ही लेटर वेंट टू मुंबई टू परस्यू हिज इंटरेस्ट इन फिल्म्स. और डायरेक्टर उनको मिले थे भीम सिंह. भीम सिंह जी के असिस्टेंट बन के उन्होंने काफ़ी सीखा उनसे. एंड देन हिज फर्स्ट फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, वहाँ से मतलब सक्सेसफुल स्टार्ट ना. एंड देन अगर फिल्म पहली थी 77 की, लेकिन थोड़ी सी बेवफाई वॉज दी फिल्म दैट ही रियली स्कोर्ड पॉइंट्स इन 1980. गॉड एंड गन आहिस्ता आहिस्ता, आपने जो गाना सुना कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, भूपेंद्र सिंह का गाया हुआ. भूपेंद्र सिंह जी ने कमाल कर दिया उस गाने में. फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता. मझधार वॉज अनदर ब्यूटिफुल फिल्म. दिल आखिर दिल है, तरकीब बुलंदी निश्चय सूर्या झूठा सच. अब एक फिल्म थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड दैट वॉज नाजुक सा मोड़. उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करनी थी, उन्होंने स्टोरी लिखी थी, स्क्रीन पे भी स्क्रीन प्ले भी किया हुआ था एंड स्टोरी भी लिखी थी. एंड इट वॉज टू बी शॉट इन दिल्ली. और इन्होंने डायरेक्शन के लिए फिल्म दे दी थी एक और शख्स को, लेकिन वो फिल्म ही कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा. हम याद कर रहे हैं नन अदर देन इस्माइल श्रॉफ जी को, जिन्होंने खूबसूरत फिल्में हमको दी. वो फिल्म जो थी जिसका स्केड्यूल आरके एंटरप्राइज ने किया था, वो फिल्म थी नाजुक सा मोड़. इन्होंने स्टोरी लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रीन प्ले लिखा, एंड देन नोएडा दैट इज इन दिल्ली अदीप टंडन को दी गई थी फिल्म. एंड 2009 में उन्होंने क्या किया कि वो दिल्ली जाके रहने लगे वहाँ पे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सुपरवाइज जो डायरेक्शन हो रहा था, टू मेक श्योर दैट इट वॉज द डेब्यू फिल्म ऑफ अदीप टंडन, हु वॉज अ सिनेमाटोग्राफर एंड ही हैड डन मैनी हिट फिल्म्स एज अ सिनेमाटोग्राफर, बट दिस वॉज हिज डायरेक्शन. पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे अदीप टंडन, और ये उनकी देखभाल करने के लिए, मतलब कि टू मेक श्योर द फिल्म. लेकिन फिल्म रुक गई एंड द डायरेक्टर डिड नॉट हैव इनफ पावर्स टू रीस्टार्ट द शूटिंग एंड कंप्लीट इट. सो वहाँ से ये फिल्म नहीं चली. लेकिन क्या टाइटल था, नाजुक सा मोड़. आई वंडर व्हाट द फिल्म वॉज अबाउट. बट लेट्स हियर द सॉन्ग्स ऑफ नन अदर देन इस्माइल श्रॉफ. We remember him for his fond direction.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you 128.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
8: फोन 020-8574-8410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
10: Dad.
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
12: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhai
12: new toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life. Start your

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208 426 0678
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
5: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
5: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
7: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई
8: पवन जी मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है
9: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
10: भाई निकाल माइक
11: भाई माइक के पिया कितना सुंदर
12: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV
13: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
14: And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
15: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
14: Conditions apply. See online for details.
13: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
16: Moinuddin, the brother of Ismail Shroff. Story, screenplay and dialogues.

0: ये फिल्म डायरेक्ट की थी शम्मी दी एक्ट्रेस ने, राजेश खन्ना की पर्सनल फ्रेंड थी, उन्होंने डायरेक्ट की थी क्योंकि राजेश खन्ना और इस्माइल श्रॉफ का झगड़ा हो गया था उसमें। बड़ी कहानी है, कभी बोलूंगा।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Like a
1: tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: This is Bally Brambat on Laika Gold।

0: पुलिस पब्लिक 1990 की, सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड दैट वॉज रिटन बाय हिज ब्रदर एंड इस्माइल श्रॉफ हैड एक्चुअली डन द डायरेक्शन एंड द म्यूजिक वॉज बाय राम लक्ष्मण. ऑफकोर्स हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: Ismail Shroff directed this film, Dil Akhir Dil Hai. Music by Khayyam.

शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म है हलाकू, और उसमें कौन थी? यस, स्टारिंग प्राण अजीत एंड मीना कुमारी। प्राण अजीत एंड मीना कुमारी, उसके बाद पासा पलट गया और मीना कुमारी यूज्ड टू बी मेंशन फर्स्ट।

0: चल चल
1: जवानी दीवानी खूब सूरत जीती पड़ोसन
2: एंड देयर यू गो एक दूजे के लिए दैट्स राइट एंड स्माइलिंग ही इज स्माइलिंग हु यस सैंडी शाह इज जस्ट एंटर्ड इन हंसते हुए बिकॉज वो भी हंस रही है ना आशा भोसले जी एक दूजे के लिए और वो साथ में हंस रहे हैं सैंडी शाह ओके सो ही टेक्स ओवर एंड इट्स राज पतन ऑन लाइका रेडियो मिनलैंड्स बाली ब्रह्मर का नमस्कार
3: म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन लाइका गोल्ड
4: दुनियाओं से के जमाना उसी का

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल Auto protected.
3: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
4: Govind bolo Hari Gopal.
5: Krishna Janmanu Anandutsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
6: Nand ghera nand bhayo jay kare.
3: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardomedialtd.com.
5: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
0: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
13: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
12: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं।
14: तो फिर
13: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
15: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद
16: भी। बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
17: सोना ज्वेलर्स .co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफ टाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट। 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट 600 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
2: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959 250 376.
18: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
19: Soulful melodies, timeless poetry, the greatest guzzles that touch your heart. Laika Radio Guzzles launches soon.

0: Hi.
1: Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: They are indeed, and Southall Travel is pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to the Bay. Why don't you call Southall Travel for the best deals to the Bay on 0208 574 841, and don't forget they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
4: Travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
4: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: गेट रेडी यूके. स्नेल ग्रोवर इज कमिंग लाइव विद गुत्ती, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू बाबी एंड मोर सरप्राइजेस ऑन द नाइट.
8: एक्सपेक्ट म्यूजिक मैडनेस, फैमिली एंटरटेनमेंट एंड नॉन स्टॉप लाफ्टर. स्नेल ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026 हैपनिंग ऑन द 29th ऑफ अक्टूबर एट द ओवर अरेना वेम्बली इन लंदन.
7: 31st अक्टूबर मैटियोली अरेना लेस्टर. प्रोड्यूस by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स. परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर. आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए. 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर.
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स. खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
15: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर.
18: Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
0: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड।
1: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
2: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
1: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेज एंड हाई स्कूल हैरो 30th August वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
3: इल्फर्ड अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
4: परंपरा भी
1: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसिल इल्फर्ड IG26HA कॉल 07555050615।
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
5: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhaayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhaayu, Ayurveda that fits your life.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
9: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
10: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
0: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
7: परंपरा भी
8: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउस लो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
11: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
12: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

0: and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
0: high appreciation
1: in Dubai.
2: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: टेस्टी स्वैग एंड स्वीट चार्म. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
4: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
3: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
5: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Or lose the discount after. Call also not yours now on 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
6: The Evening Show with Ashwini.
7: मैं हूं अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
8: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। फील गुड वेंसडे मना रहे हैं आप और हम साथ में शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। जी हाँ, आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं कि जाके बाहर तरह एक्लिप्स देखिए। भाई हमारा जो स्टूडियो है ना, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं। मैं और मेरी पड़ोस वाली है, मतलब रेडियो वाली, हम दोनों भाग के टेरिस पे गए देखने के लिए। हम लोग रुके भी वहाँ पे 5 मिनट कि हमें एक्लिप्स दिख जाए, लेकिन नहीं, हमें वो देखने नहीं मिला। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने पिक्चर्स लिए हैं, वीडियोज़ लिए हैं तो बता दीजिए, देखिए, मतलब यहाँ पे भेज दीजिए, हम लोग भी देख लेंगे। ओके, सो अटेंडेंस रजिस्टर खोल चुका है, सारे के सारे प्यारे प्यारे धुरंधर अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। पूछें आप सबसे, मेरे इस फेवरेट डे पे आप सब कैसे हैं? मैं खुश, हम सब खुश, है ना? कैसे कंसिडर कर रही हूँ मैं कि हम सब खुश? नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, आप लाइका गोल्ड सुन रहे हैं लंदन में एंड लाइका रेडियो सुन रहे हैं ग्रेटर मैनचेस्टर में, तो आपने खुश खुश तो रहना ही है ना, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है। एंड मिड वीक स्पेशली 2 दिन इधर एंड 2 दिन उधर के बाद में तो हम सब जो हैं, हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, आई लव माई हिंदी, हम इतने खुश हो जाते हैं एंड खुशी के मारे रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के सुनते हैं, जैसे कि इस शो का वॉल्यूम अब बढ़ा के सुनते हैं। तो कोई थ्योरी लाई है अश्विनी? बिल्कुल लाई है। कुछ सवाल पूछेगी? बिल्कुल पूछेगी। लेकिन उसके पहले मन्नाडे एंड शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में सुनाते हैं आपको एक और गीत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 60 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच।

0: तमन्ना ने शैलेंद्र सिंह की आवाज में बॉबी से सुनाया आप सभी को ये गीत, और कितनी सारे लोगों ने अपनी अपनी यादें हमसे शेयर की है रिगार्डिंग दिस फिल्म एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। भाई वही तो मैं कहती हूँ कि संगीत के साथ में हमारी यादें इतनी जुड़ी होती हैं, और वो जो खुशी के पल बिताए होते हैं उस गाने से रिलेटेड किसी हमारे अपने स्पेशल के साथ हमारे चेहरे पे लाता है स्माइल, है ना। सो भाई वो आप अपना कोई एक स्पेशल गीत मुझे बताइए जो आपके लिए, बाकी सारे गाने कितने भी स्पेशल हो जाए लेकिन अश्विनी ये वाला गीत ना, ये मेरे लिए स्पेशल है बिकॉज दिस गीत रिमाइंड्स मी और दिस गीत मेड अस मीट विद आवर सोलमेट्स फ्रेंड्स, कहीं कुछ तो हुआ था, एनीथिंग कुछ भी आपकी याद है लेकिन वो पर्टिकुलर गीत आपके लिए बहुत बहुत दिल के जहन के करीब है, जल्दी लिख के बताइए। थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं हमारी हमेशा का जो एक सेगमेंट है इस आवर का, लाइफ थियरी।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड। This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: London, Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shiv Dasani. Playback singer Amantrika.
4: Hello re, hello re, hello re, hello.
3: Aur soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Today, 3rd October, 7 p.m. Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
5: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
6: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
5: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe. बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
7: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
8: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avara Pan 2.
9: Usne mujhe chua, par apnaya
8: nahi. Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
10: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
11: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
12: बीकानेर वाला परंपरा भी
13: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
14: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
15: सितंबर महीना में हसन और डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
16: तमे
15: ज्यादा पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
16: તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો।
17: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલભાઈ ની જાનમાં। હવે રાઇસલીપ, પોટર્સબાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં। ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270। નાટકનું નામ યાદ રાખજો
18: હાલો પટેલભાઈ ની જાનમાં।
19: સોલફુલ મેલોડીઝ, ટાઈમલેસ પોએટ્રી, the greatest guzzles that touch your heart. Leica Radio Guzzles launches soon.
20: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
21: The Evening Show with Ashwini.
22: Leica Gold.
19: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला रही है घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 33 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। और इस टाइम पे आते आते हम आपको सुनाते हैं एक लाइफ थियोरी। आज की लाइफ थियोरी का नाम है द इम्पाला इफेक्ट थियोरी। एक महिला जाती है सफारी घूमने के लिए। जो जीप में ड्राइवर होता है वो पूरा सफारी ये मैडम को घुमा देते हैं। वो कहती है सब देख लिए जानवर, पूरी सफारी घूम ली, लेकिन शेर कहीं देख नहीं रहा। और वहीं पे वो ड्राइवर जीप रोकता है और इन्हें दिखता है इम्पाला। अब इम्पाला क्या है? ये एक ऐसा जानवर है जो हिरन होते हैं, मतलब डियर होते हैं, उन्हीं के जैसे दिखता है। एंड वहाँ पे ये इम्पाला एकदम शांत बैठा है और कुछ ही दूरी पे झाड़ियों में शेर है। अब ड्राइवर कहता है कि मैडम देखिए, आपने शेर नहीं देखा था ना, वहाँ पे झाड़ियों में शेर बैठा है। तो वो कहती कि फिर ये जानवर ऐसा क्यों बैठा है, ये भाग क्यों नहीं रहा? तो ड्राइवर बताता है कि इम्पाला की एक्चुअली कैपेसिटी जो है, भागने की स्पीड जो है, वो शेर से 2 गुना ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज ये अपने झुंड से, अपनी टीम से अलग हो गया है, यहाँ बैठा है, इसलिए डर के मारे ये फ्रीज हो गया है और ये हिल नहीं सकता है। तो अब इसके मरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इम्पाला थ्योरी और हमारी लाइफ थ्योरी, इसका क्या लेना देना है? तो ये थ्योरी हमें ये सिखाती है, हमारी ज़िंदगी में आसपास ऐसे कुछ लोग होते हैं, या शायद कभी हम भी होते होंगे, कि हम अपने अहम में, अपने ईगो में जाके अकेले रहते हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, बाकी पूरी दुनिया जो है वो अलग है, मुझसे ही सब ऐसे बिहेव करते हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो ऐसे जब लोग होते हैं वो भी ज़िंदगी में अकेले पड़ते हैं, और जब भी डाउनफॉल आता है, जब भी कठिन परिस्थिति आती है, तब ये अकेले पड़ जाते हैं। देखिए, हम ह्यूमंस जो हैं, हमें दूसरे ह्यूमंस की ज़रूरत है अपने लाइफ में, अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपना एक ह्यूमैनिटी वाला जो एक जत्था होता है, उसकी ज़रूरत हम सभी को होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो में जाके कुछ लोग अपने लोगों को छोड़ देते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली ये जो अपने होते हैं वो तब तक अपने हैं जब तक आपको मानसिक प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करने दे आपके लिए, तब तक अपने लोग होते हैं। दुनिया में बहुत प्यारे लोग हैं, मैं इसमें बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ, बिकॉज आई हैव मेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल, एंड करंटली द बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल आर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। ओके, सो यू डू गेट बेस्ट एंड लवली पीपल इन लाइफ। सो ये स्टोरी हमें यही बताती है, ये थ्योरी हमें यही सिखाती, हो जाता है भाई मनमुटाव, हो जाते हैं डिस्टेंसेस, उस टाइम पे थोड़ा स्पेस दे दो, लेकिन छोड़ो मत ना अपनों को, टाइम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। थोड़ा सा स्पेस देंगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जब वापस आप अपनों में आ जाते हैं, और ये अपने केवल खून के रिश्तों के नहीं होते हैं, राइट, हमारे अपने वो होते हैं जो हमारा साथ निभाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे रिश्तों को गंवाए ना। आपके लिए इम्पाला थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, हाँ मुझे मत बताइए, आप अपने लिए सोचिए एंड इम्पाला थ्योरी का यूटिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में जरूर कीजिएगा। कैसी लगी आज की थ्योरी बताइए, लिख
0: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे। ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: From the first time they lose a
4: baby tooth, look mom,
3: to the countless times they forget to mention their
5: ingredients for food tech tomorrow,
3: to the last time you hear that school was
6: yeah, all right.
3: Kids grow up fast. Luckily at Tesco we have back to school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists, so you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
0: This is Ash Winnie on Leica Gold. Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
6: Get ready UK Snell Grover is coming live with Gutti Dr. Mashur Gulati Rinku Babi and more surprises on the night
3: Expect music madness family entertainment and non-stop laughter Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London
6: 31st October Mattioli Arena Leicester produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions
3: supporting mental health and well-being awareness tickets are on sale now via Ticketmaster Eventbrite and AXS
6: for more information contact 07585 801 801 official radio partner Leica Radio Network
7: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
6: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu. Ayurveda that fits your life.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
14: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई
15: पवन जी मैंने सुना है जी? आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है
16: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
17: भाई निकाल माइक
18: भाई माइक के पिया कितना सुंदर
6: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV
19: Leica Radio Network proud hospitality partner Ragasan The Leica Radio Network The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.69 इंडियन रुपी, 374.72 पाकिस्तानी रुपी, 450.94 श्रीलंकन रुपी, 166.2 बांग्लादेशी टाका, 88.30 अफगान अफगानी, 174.38 केनियन शिलिंग, 1.34 US डॉलर्स, 63.50 मॉरिशियन रुपी.
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.47 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 7. कितना जल्दी फर्स्ट आवर खत्म होने में आ रहा है ना. मतलब अभी तो शो शुरू किया था. ऐसा है क्या कुछ एक्लिप्स में टाइम भी बहुत फास्ट भगता है? हो सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्लिप्स में. तो आज एक्लिप्स है. जी हाँ, एक्लिप्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, स्पेशली जब हम समुंदर की लहरों के बारे में हमें जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्लिप्स के दौरान क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं. लास्ट गीत इस आवर का जो है वो है सुरेश वाडकर एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में, प्रेम रोग से भवरे ने खिलाया फूल. एंड लाइफ थियरी जो आज सुनाई है, द इम्पाला इफेक्ट थियरी, वो आप सबको देखने मिलेगी, सुनने मिलेगी ऑन माई इंस्टाग्राम एट रेडियो वाली अश्विनी, जरूर चेक करिएगा. नेक्स्ट आवर में घर घर की कहानी एंड अभी किसी का इंटरव्यू भी होने वाला है, उनसे हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चलने वाली हैं, तो सुनते रहिए. दिस इज लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: Ashwini, brightening up your weeknights. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
4: Lester Miller is back.
5: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
4: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H. Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड। बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: Mapster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mapster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
3: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
4: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
3: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
5: The Evening Show with Ashwini.
6: This is Like a Gold. Reminisce the

0: वेलकम. दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. हमने आपको सुनाया कुछ गीत राजा हिंदुस्तानी से इस आवर का आगाज किया, फिर कालिया से सुनाया जब से तुमको देखा, एंड लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में हरे रामा हरे कृष्णा से सुनाया आप सभी को ये गीत. मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 8:20, मतलब मेरे सामने जो सिस्टम है उसमें 2020 एंजेलिक नंबर. जब सेम नंबर्स दिखते हैं तो उन्हें एंजेलिक नंबर्स, एंजल नंबर्स कहा जाता है. तो एंजल नंबर्स आप सुन रहे हैं मुझसे, तो बस आपका भी अच्छा टाइम शुरू. ओके. सो घर घर की कहानी में आज मैं किन रिश्तों के बारे में बात करने वाली हूँ. कल हमने कपल्स के बारे में बात की थी, उसके पहले हमारे अपने एशियन पेरेंट्स, और अब ग्रैंड किड्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे. तो जनरली नाना नानी या दादा दादी के साथ में जो पोते पोतियों का जो रिश्ता होता है वो बहुत स्पेशल होता है. कहते हैं ना कि दूध से ज़्यादा मलाई पसंद होती है. ये जो होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, हमारे टाइम पे जितने स्ट्रिक्ट होते हैं वो हमारे बच्चों के टाइम पे उतने ही लीनियंट होते हैं. एंड ये सवाल का जवाब तो पता नहीं क्यों मिलता ही नहीं है हमेशा. सो इज़ देयर समथिंग स्पेशल यू कैन मेंशन अबाउट योर किड्स एंड योर पेरेंट्स और इन लॉज, आपके जो इन लॉज हैं आपके पेरेंट्स हैं, उनका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ में कैसा है, क्या वो स्पेशल चीज़ है जहाँ पे उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी. विथ माय फादर एंड माय सन व्हेन इट कम्स टू भगवान से रिलेटेड जो स्टोरी टेलिंग होती हैं या जो मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, भगवान की पूजा होती है, वो दोनों उस चीज़ पर बड़े अच्छे से कनेक्ट करते हैं. सो फिर उनकी जो गपशप रंग, मतलब जो रंग लाती हैं गपशप, एंड जिस तरीके से उनका गिव एंड टेक होता है उन टॉपिक्स पर, वो बड़ा सुनने लायक होता है. तो हमारे यहाँ पे तो भगवान ये एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन माय सन एंड माय फादर. एंड आपके यहाँ पे अच्छा, आपका रिलेशनशिप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कैसा था उसके बारे में बताना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपी एंड 60 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
2: At AJ Bell, we believe every customer deserves brilliant service, which is just one reason we're rated excellent on Trustpilot. And we all trust pilots, with their smooth, captainy voices that make you feel like you'd let them land anywhere they like. Sorry, where was I? Right, AJ Bell, rated excellent by sexy pilots. I mean Trustpilot. I'm a flight risk. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: Like a Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas. He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
6: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel Couture.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
8: Shaam chalne lage.
7: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
11: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
12: Dard se purana rishta hai mera.
13: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
12: Usne mujhe chua, par apna yaani. To phir.
13: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
14: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
15: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
17: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: भाई मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:33। और अब हम जिनसे बात करने वाले हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज हम बात कर पाएंगे परम पूजनीय श्री चिन्मयानंद बापू जी से। और श्रावण के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना, श्री शिव महापुराण सुनाने के लिए आए हैं बापू, तो ज़रा उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका अनुभव कैसा है और वो हमें क्या क्या गाइडेंस दे सकते हैं। सो नमस्कार बापू, कैसे हैं आप?
5: जय सियाराम, बिल्कुल ठीक है, हरि कृपा
4: जी। तो लाइका गोल्ड रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे लंदन शहर में आए हैं। आप एक प्रसिद्ध कथावाचक, आध्यात्मिक वक्ता हैं, संत हैं और मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा यहाँ सुनाने आए हैं। तो 14 से 17 तारीख तक का आपका जो कार्यक्रम यहाँ पे है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमारे लिसनर्स को?
5: हाँ, मैं सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो मैं हर हर महादेव, जय सियाराम कहता हूँ। कल से मतलब 13 तारीख से 19 तारीख तक मेरी व्यासपीठ के द्वारा शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है। और ये अच्छी बात यह है कि मेरी व्यासपीठ से भारत में तो कई बार मैंने शिव महापुराण की कथा गाई है, इस बार श्रावण के अवसर पर पहली बार इंग्लैंड में मेरे मुख से शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। और ये इससे अच्छा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा कि श्रावण का महीना अब शुरू हो चुका है, जो कि गुजराती तिथि के अनुसार कल से शुरू हो रहा है
4: जी।
5: तो श्रावण का महीना और शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छा संयोग है। ऐसे श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना ये अत्यंत लाभप्रद है। हमारे पुण्य कई, तो इसमें मैं सभी श्रोताओं को, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा कि जरूर कल 4 बजे से वहां उपस्थित हो जाए। 4 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम होगा और यदि संभव हो तो आप 4 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचेंगे तो हमारे साथ शोभा यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे
4: जी। तो ये जो हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बले में है, दोपहर 3 से 7 बजे तक बापू आप जो है महापुराण की कथा सुनाने वाले हैं, तो ये सिर्फ लंदन शहर में ही होने वाला है या आप अलग अलग शहरों में भी जाने वाले हैं?
5: नहीं, अभी तो ये एक कथा तो यहाँ पर वेमली में सनातन मंदिर में होगी
4: जी,
5: और इसका जो लाइव टेलीकास्ट है आस्था चैनल के माध्यम से ऑल वर्ल्ड में होने जा रहा है
4: जी। बहुत बढ़िया, एक तो
5: में भी होगा, यूएसए में भी।
4: हाँ
5: जी
4: जी जी, हम लंदन वासियों का सौभाग्य है कि श्रावण महीने में आपके द्वारा प्रस्तुत ये कथा हमें सुनने मिलेगी। तो 15 अगस्त का हमने सुना है कि आप कोई विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं, भारत का जो स्वतंत्र दिन है उसे मनाने के लिए भी?
5: हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त भी हम लोग, स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत देश की है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जोरदार तरीके से मनाने जा रहे हैं
4: जी। और हमने सुना है कि कोई, हाँ जी, और जी, कुछ चैरिटी के लिए भी आप कुछ करने वाले हैं इस कार्यक्रम द्वारा?
5: हाँ, हमारा यहाँ पर मीमांसा फाउंडेशन ट्रस्ट जो कि भारत के लिए कार्य करता है, तो उसके माध्यम से वहाँ संतों की सेवा और गौ माता की सेवा और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए परेशान रहते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ से चैरिटी करते हैं
4: जी।
5: पूरा का पूरा आयोजन चैरिटी के लिए भी होगा
4: जी जी। सो वक्त का तकाजा है तो हमें बहुत शॉर्ट में, आप जाने से पहले हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस श्रावण मास से रिलेटेड?
5: मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे लिए समय निकालता है मैं भी उसके लिए समय निकालता हूँ। तो जिंदगी जब तक है फुर्सत न होगी काम से, कुछ न कुछ काम तो लगे ही रहने हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस है, श्रावण का महीना है, तो भगवान के लिए समय निकालें। यदि भगवान के लिए हम समय निकालते हैं तो भगवान निश्चित हमारे लिए जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तो समय निकालेंगे। तो जरूर हम लोग भक्ति के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए समय निकालें, ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद है और बहुत महत्वपूर्ण है
4: जी। और जैसे हमने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद लंदन वासियों को मिल रहा है, हमारे लाइका गोल्ड को भी आपका आशीर्वाद देते चलिए, और पुनः नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो ज़रूर आपके साथ में बातचीत होगी और आपका गाइडेंस ज़रूर लेंगे
5: जरूर जरूर लाइका के जितने भी श्रोता हैं जो इस वक्त सुन रहे, पूरे परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: धन्यवाद जी, और अपना खूब ख्याल रखें, और जरूर हम सभी कोशिश करेंगे कि आप जो कथा सुना रहे हैं वो कथा सुनने हम सब पहुंचे। धन्यवाद।
2: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.
0: ये है Leica Gold. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
4: एपिसोड नंबर 28 आ चुका है. इट इज होस्टेड बाय खुश. एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि ये सच्चाई है या ट्रैप है. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे.
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
8: Oh, terrible weather.
7: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
9: See ya, good luck with the interview.
8: Thank you, bye.
7: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Disposable available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Dad.
12: What's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Leica Radio Network.
14: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
16: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
0: Emotion of the day.

0: Emotion of the day.
1: Emotion of the day.
0: This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.68 इंडियन रुपी, 374.7 पाकिस्तानी रुपी, 450.91 श्रीलंकन रुपी, 166.13 बांग्लादेशी टाका, 88.26 अफगान अफगानी, 1.34 यूएस डॉलर्स एंड 174.37 केनियन शिलिंग.
3: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £105.20 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. हमने आज आपको घर घर की कहानी में ये सवाल पूछा है कि भाई आप अगर नाना नानी या दादा दादी है तो आपके रिलेशनशिप आपके जो ग्रैंड किड्स हैं उनके साथ में कैसे हैं, या आप खुद जब ग्रैंड किड्स थे तो नाना नानी दादा दादी के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे थी. आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने बहुत प्यार से अपनी अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो रिलेशनशिप हैं, मुझे बताई. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विथ मी. देखिए यही मज़ा है इस शो का कि हम आपको बहुत सारी प्यारी चीज़ें सुनाते हैं, संगीत सुनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपके इमोशंस हैं जिसे सोच के आप मुस्कुराए, यही तो होता है. लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर, सोनी मेरी सोनी.
0: दिस इज Leica. This is Ash Winnie on Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान. देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
8: साफो ट्रेवल. Auto protected.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
11: नो नीड टू फ्लाई बैक होम. this summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
13: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
14: The Evening Show with Ashwini.

0: वेलकम. दिस इज द थर्ड एंड द आखिरी आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. फील गुड वेंसडे मना रहे हैं आप और हम. एंड इस आवर का आगाज हमने किया था बड़े ही मेलोडियस ट्रैक के साथ में, 1942 लव स्टोरी. 90s के बच्चे वहाँ खुश हो गए क्योंकि कुमार सानू की आवाज़ में एक लड़की को देखा, वो ट्रैक सुनाया. उसके बाद 80s वाले बच्चे खुश हुए क्योंकि आखिर क्यों लता मंगेशकर एंड अमित कुमार की आवाज़ में. भाई आप और हम किसी भी एज में हो पर जब बच्चे कहा जाता है तो इनर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ना, वो बड़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट होती है कि हम सभी किसी न किसी के बच्चे तो हैं एंड ड्यूरिंग दैट एरा हम बच्चे थे. सो या इट्स अ फील गुड फीलिंग टू यू नो जस्ट गेट दैट कॉम्प्लीमेंट. एंड ऐसे भी फील गुड वेंसडे मनाते हैं हम तो दो दिन इधर एंड दो दिन उधर. कल होगा थ्रिलिंग थर्सडे एंड उसके बाद में फैंटास्टिक फ्राइडे. देखो मैंने कहा था ना कि जब ट्यूसडे शुरू हो जाता है ना तो उसके बाद में तो इतना फटाफट सप्ताह निकलता है कि पता ही नहीं चलता. नेक्स्ट ट्रैक किशोर कुमार की आवाज में आप सभी को सुना रही हूँ, बुड्ढा मिल गया इस फिल्म से. अरे बहुत बढ़िया ट्रैक है.
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपीस 60 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 9:29. इट्स 9:29. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. आर्टिस्ट ऑफ द वीक लता मंगेशकर हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक. नेक्स्ट ट्रैक गारंटीड. जो लोग सोच रहे हैं कि अब हम रेडियो बंद कर देंगे, देखो अभी आपके मैसेजेस आएंगे मुझे.
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
2: Artist of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Two businesses.
4: Same town.
3: Same service.
4: One appears on page one of Google.
3: The other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
6: Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.67 इंडियन रुपी, 374.85 पाकिस्तानी रुपी, 450.99 श्रीलंकन रुपी, 166.15 बांग्लादेशी टाका, 88.37 अफगान अफगानी, 1.34 US डॉलर्स एंड 174.40 केनियन शिलिंग.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.14 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. 12th ऑफ अगस्त फील गुड वेनसडे सेलिब्रेट किया आपने और हम में. गोल्ड नाइट्स ओवर नाइट सर्विस जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. हमेशा की तरह बस इतना ही कहेंगे भाई, प्यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो. लाइफ बड़ी सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. आपके मन में जो भी बातें हैं प्लीज़ दिल खोल के बोलिए, जुबान से बोलिए. दिल और दिमाग की बातें समझ में नहीं आती जब तक इंसान नहीं कहता. कल बहुत धमाकेदार दिन रहने वाला है, मतलब बहुत गर्मी वाला दिन है, तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बहुत सारी सनस्क्रीन लगाएं. घर से बाहर निकलने की अगर ज़रूरत ना है तो ना निकले. Okay, on that note, I have to say, love you all, take care, here I say, bye-bye.
0: Ye hai Laika Gold. Laika
2: Gold. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए?
0: अच्छी आपने बुलाया इसलिए।
1: आए हैं तो काम भी बताइए।
0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है।
0: अजी देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है।
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।
1: भूल को ना जाओगे?
0: ना भूलूंगा।

0: तुम्हारे हैं।
1: वेरी गुड।
0: तेरे ही सहारे हैं।
1: जॉली गुड।
0: दिल भी तुम्हारा है।
1: क्या कहने हैं।

0: Like a Gold.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
4: Daddy!
3: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
7: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
8: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
7: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
8: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
7: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
8: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
9: Dad!
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch. एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
13: क्रिएटिव टीम इवेंट्स एंड पीस नेशन यूके ब्रिंग्स टू यू द किंग of Sufi music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
14: Bollywood ke legend kalakar, sirf Like a Gold par.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: सारू सारू
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई,
2: फिर
0: फुर फुर फुर फुर बताओ नी बड़ी क्या बात हुई। कह दो
3: कह दो
0: कह दो कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

0: to you the best classics all night. This is Like a Goal. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
1: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Function rakha hua hai.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
11: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
12: Tu hi tu hua, tu agar meri, ye hawaen teri tu agar.
13: Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor, Watchdog Security. Associate sponsor, Lemfi.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: फिर याद वो ज़ालिम।

ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, हा हा हा हा हा, डर गया ना।